0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित दूषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।